0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू
1: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा
0: मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन
1: ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए।
2: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स ATO डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: स्मिथ्स लेन बाय मोवैक विच अपने भविख की शुरुआत करो हुणे कदम चुको अते स्मिथ्स लेन दे चुने हुए लॉट्स ते सीमित समय लई मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो चुनवे योग लॉट्स ते हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा ले रहे बिल्डर्स वालों वादू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नु खत्म है अजे हे मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे होर जानकारी लई आज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन ऑफर 15 सितंबर 2026 नु खत्म है।

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए नी लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
1: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
2: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। एटीओ ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, एटीओ डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

0: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नू आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending। मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक, ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स, अपने बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300-151616, quicksignage.com.au।
1: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
2: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
1: फिर लवाइए कित्थों?
2: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
3: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
1: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
5: किथे वज गई तेरी गड्डी?
6: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
5: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-7748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।

0: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले हूँ नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990 BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900 एक खास ऑफर 31-30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी BYD ऑन रोड्स ऑनर्स कंडीशन अप्लाई
1: सोना चाहिदा
2: भरोसा चाहिदा
1: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042 किचन का स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
3: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
4: हां जी रेडियो

0: आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तो हाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: Smith's Lane by Merlac Vich, अपने भविख की शुरुआत करो, हुणे कदम चुको अते Smith's Lane दे चुने हुए लॉट्स दे सीमित समय लई मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स दे हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा ले रहे बिल्डर्स वालों वाधू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नु खत्म है, अजे ही मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई आज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नु खत्म है।
2: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 डॉन स्टील स्ट्रीट डैंडीनोंग। तो ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।

0: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन। सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
2: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
3: मैनू अपनी नवी दुकान ले प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक, ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स, अपनी बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300-151616 quicksignage.com.au।
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
6: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
4: फिर लवाइए किथों?
6: सन करंट वालिया कोलों, 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
4: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
2: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले। जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
4: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
7: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990 BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900 एक खास ऑफर 1 अगस्त तो 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करन वाले ले है डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी BYD ऑन रोड्स ऑनर्स कंडीशन अप्लाई
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते लै सकदे हो पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
2: टेंशन निरी टेंशन
3: की होया
2: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
3: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो VY इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-93-33
3: या ईमेल info@vyimmigration.com.au
2: याद रखो 9077-9733
3: VY Immigration and Education Consultant
2: हर कदम तुहाडे नाल।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुण टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलीगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुण ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
3: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
3: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनु भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि

0: ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: टेंशन निधि टेंशन
2: की होया
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं।
2: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-93
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733।
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तुहाडे नाल।
3: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय लई। हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त तो 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करन वाले लई है। डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑन अस। कंडीशन अप्लाई।

0: गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: जो हुकम मेरी सरकार।
0: वो आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो।
0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वैरी दी टोयोटा,
4: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वैरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग।

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम द डीप टॉक शो दे विच तुहाडा एक बार फिर तो स्वागत। और गल स्पेस डेब्रिज दी चल रही है, स्पेस जंक दी चल रही है, या पुलाड़ी कचरे दी गल चल रही हैगी है। डॉक्टर संदीप कौर साडे नाल फोन लाइन दे उत्ते मौजूद हैगे ने। संदीप जी ने हुण तक आपां नूं दस्या समझाया कि किस तरीके दे नाल जिहनूं हुण तक छोटे छोटे स्पेस दे विच जिहड़े टुकड़े हैगे ने उहनां तों लैके कुछ सेंटीमीटर तों लैके बहुत बड़े जायंट साइज तक दे टुकड़े जिहड़े ने किदां स्पेस दे विच जंक क्रिएट कर रहे हैगे ने। संदीप जी, फिर एंड स्टोरी यह है, मैं यह पुछना चाहना हूँ कि जे ठीक है, जे इन्ना कचरा फैलता हैगा, अनवॉन्टिड जिहड़े सैटेलाइट्स

0: ਵਰਕਰਸ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਦਾ ਕਾਲ 0491-999-555 ਗਿੱਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने एटीओ ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स एटीओ डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते लै सकदे हो पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच

को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर, वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending। व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: स्मिथ्स लेन बाय मोवैक विच अपने भविष्य की शुरुआत करो, हुणे कदम चुको अते स्मिथ्स लेन दे चुने हुए लॉट्स ते सीमित समय लई मिलण वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स ते हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करण ते हिस्सा लै रहे बिल्डर्स वल्लों वाधू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नूं खत्म है, अजिहे मौके ज्यादा देर नहीं रहिंदे। होर जानकारी लई अज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नूं खत्म है।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनूं वी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है कि प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: टेंशन मेरी टेंशन
2: की हुआ
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-500-500
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733।
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तो आड़े नाल।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी, असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton. सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते, दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।

ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold लेंडिंग। चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tyrefors.com।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, फाड़े घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
2: ओपाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
2: फिर लवाइए कित्थों?
3: सन करंट वालिया कोलों, 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246। ऑन रोड्स ऑन अस कैंपेन सिर्फ

सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है। डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑन अस। कंडीशन अप्लाई।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: ब्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300-1516-16 quicksignage.com.au।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।
1: टेंशन मेरी टेंशन
2: की हुआ
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-500-500
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733।
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तुहाडे नाल।

मैनू कबूल है तेरा हर दुख सुख, मैनू कबूल है तेरा हसना रोना, ते मैनू कबूल है तेरा हर ओ लफज जो बिना कहे बुला तो बयान होंदे तेरी अख चो। साड़ी जिंदगी अज उस मोड़ ते है जिथे तू मैनू छड़ना नहीं ते मैं तेनू छड़ नहीं सकता, इसे करके तक है मैनू लगता प्यार मेरा।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: VY Immigration and Education Consultant
0: हर कदम तो आड़े नाल।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते ना, तब तक हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
2: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
1: फिर लवाइए किथों?
2: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
3: हां जी, ओए हां जी,
4: हां जी,
3: रेडियो
4: We are

0: The Beard Man.
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना, 347 डॉन स्टेल स्ट्रीट, डेंडीनोंग। ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।

सुनै सेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावे राह, सुनै हाथ होवे असगा, नानक भगतां सदा विगा, सुनै दुख पाप का नास, मन्ने की गत कई न जाय, जे को कह पिछे पछताय, कागद कल

तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सच्यार तौलै उपर केता पार धरती होर परै होर तिस्ते पार तलै कमन जोर जी

एक बार जो तुझ पावै साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाक सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच्छ मल पाख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

ओ मरै न ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै का अंत नंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार, देखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत बहारा तीरे सुनियार, एरन मत वेद अथियार, पौ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित ताल, करिए शब्द

आप श्रीमुख वाग्पाद सहित स्वी छपे छो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जात हर पात नय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नार सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्वे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वदंदे नमो सतबंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री छंतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लभ है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वमुख प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्तं निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिर्द करदा अधो उर्द अर्दंग अगा उग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारं अछेती अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चातुरी छंद जलय हैं थलय हैं अभीत हैं अभय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अवेश हैं प्रियंग प्रछंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तं निनाथे नमस्तं परमाते नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं अकाले नमस्तं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दिसंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तं प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपनकाल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तात्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान ताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्व गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अना

कालानकान अनुभूत अंग अभावंगत मित पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्रेतरम सर्वां परनांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभे जुभेश के आगा जिकर्मय के आ

कृति हैं कि छत्रं छत्री हैं कि ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव हैं कि आप अभेव हैं कि चक्रं बहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राजक रहीम है के कर्मक करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रदानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के अकाल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम है सलीख मुदाम है गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीज़ुल तमाम है रजूअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाय यकीन है अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज़ुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंद है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरकनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे।

ंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग्न शरीक है अमितो अमिक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के हाजर हजूर है मेषर सलाम है समस्तल कलाम है के साहिर दिमाग है के उष्ण चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकम परनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम परनास है बिस्तल निवास है के सर्वल गवन है के हमेशल रवन है तमाम तमीज है समस्त अदीस है परंग परंग ईस है समस्त अदीस है अदेशल अलेख है अभेशल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुमा है करीमल कुमाल है के जुर जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मित्तो सुबास है के अजब स्वरूप है।

गण मुदाम अर बार गंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुण गण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करना ले है अर काले है कलखंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्म नायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रजांग प्रया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादूते कलंकार रूपे अकलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो भंग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सुतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब भूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयम्बम सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते तो प्रसाद सोइए सराव सद समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधायक सन समूह अवनिवृति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन को जात निवारे पारी पजान कपूर बलि बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुप अंत को नांगे पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है हजराज हजारे पूत पविख पवान के पुप कौन गुनेनी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सुसंयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जत हर सुबह सुबिचार हजार को देख श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख सुध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान।

बड़े बड़ियार अवतार इसार की धार बिछैया, तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ान के तोरन हर सुबातन ही चकचार लवैया, साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सु एक दवैया, दानव देव फिनन निसाचर पूत पवेख पवान जपेंगे, जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बो पुंज कपेंगे, सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अब लोग जपेंगे, मानव इंद्र गजिंद निरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे, कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे, ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत।

0: लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच को सुन लियो सब जन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कौन ले पायन पूतरियो सिर कौन ले लिंगले ढलकायो कौन लिखियो हर अवाची दिशा में कहूँ पुछा को सी सुनवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती तो पई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबै तुम कावो आप हाथ दै मोय बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छान कर दै करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजो करियो रक्षा राख लो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ देते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरत निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब ताका मूड उचारत पेदा जा को पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किछ भेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार कर चिंत नहीं पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहब सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कई पूपा अंडज जे राज से तजकिनी उत्पुज खान बहु रज दीनी कहो फू राजा है बैठा कहो सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंभव आज जुगा स्वरूप सुजंभव आवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन काता जे आज तो तब सरनी परे दिन के दुष्ट दुख्त है मरे पुरख जवन पाग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार तिहाय है ताके काल निकट नहीं आए है रच्छा होए ता सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

तहि गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनू अंधन

0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
1: परम सन्मान योग पतित पावन भगत वशल करुणा निधान दीना बंधु ज्योति स्वरूप चवर शतर तखत दे मालिक जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दी जागदी जोत अंतरजामी साहिबे कमाल दीन दयाल प्रतख सतगुरु धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी महान पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सचे पातशाह महाराज सोडी सुल्तान धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया ऐसे दीन दयाल सतगुरु महाराज जी के पावन स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी श्री दरबार साहिब श्री अकाल तख्त साहिब जी के महान महान पावन स्थानों पर हाजरीन हो रही गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु की साजी निवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ दीवान हाल मंजी साहिब जी विखे सचे पातशाह महाराज साहिब जी दे पावन चरणा पास अपनियां हाजरियां लगवाइए श्रद्धा भावना सहित दोवे हाथ जोड़ सतगुरां नूं सीस झुकाइए मेल उचारिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंतरजामी सतगुरु महाराज सचे पातशाह जी ने बेअंत कृपा कीती है सारे ही संसार सब मनुखता सब जिया दी कल्याण भले वास्ते उस पावन स्थान दे उपर अमृत वेले दे समय प्रकाशमान हो करके सर्व सांझा उपदेश बख्शिश कीता है जिस दे बावत पावन गुरबाणी जी के बचन हन डिठे सबे थाव नहीं तुद देहया बदोह पुरख बिधातै तां तू सोहया वसदी सगन अपार अनूप रामदास पुर हर हा नानक कसम लजाहे नाया रामदास सर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की अमृतमयी गुरबाणी दे विचो साढ़े सब जिया दी कल्याण भले वास्ते महाराज जी ने यह पावन श्री मुख वाक जी की दात बख्शिश कीती तिस बख्शे हुए पवित्र श्री मुख वाक और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी लड़ी बार पावन गुरबाणी जी की शुभ कथा विचार नूं श्रवण करन दे लई आप समूह साध संगत दीवान हाल मंजी साहिब जी विखे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे राही आपो अपने घरां दे विच देश विदेश विच थां पर थां सतगुरु जी महाराज जी दे चरणां दे विच अपना चित जोड़ रहे हो आसा दी वार जी दे पावन कीर्तन गुरबाणी जी दे शब्द गाए सन्मान योग रागी सिंघां दी रसना तो श्रवण कीते ने सारे संसार दे विच साध संगत दी बहुत सारे स्थान ने बहुत सारियां थावां ने जिन्हां दी यात्रा करन वास्ते सैर करन वास्ते संसार दे लोक जांदे ने उन्हां थावां ते उन्हां दी आपो अपनी विशेषता पर दुनिया विच अजिहा कोई थां नहीं है जिस थां दी यात्रा करदियां दर्शन करदियां इशनान करदियां तन और मन नूं शांति प्राप्त हुंदी होवे। अजिहा स्थान इस धरती दे उपर नौ खंडां दे इस ब्रह्मंड दे विच केवल सतगुरु महाराज साहिब जी ने यह पावन स्थान रचिया है जिस दे सानू सब नूं दर्शन हो रहे ने। जिथों सत संगत दी यह आवाज यह वचन हमेशा गूंजदे ने कि खत्री ब्राह्मण सूद वैश उपदेश चहु वरना कौ सांझा गुरमुख नाम जपै उधरै सो कल मह घट घट नानक माझा। जिथे किसी दे नाल भी किसी तरह का भी भिन्न भेद वितकरा फर्क नहीं किया जाता सतगुरु जी की चलाई मर्यादा अनुसार जिथे गुरु की संगत विच बैठ करके पावन गुरबाणी जी के शब्द रूपी प्रसाद नूं सेवक सिख अविलाखी जिग्यासु गुरमुख अपने हिरदिया रूप भांडिया विच पाउंदे ने उथे साध संगत दी तन दी भुख मेटण दे लई अपने मुख दे राही गुरु के लंगरां दे विचों भी बेअंत बख्शिशां प्राप्त हुंदियां ने। ऐसा पावन स्थान जिथे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे दर्शन दीदार अमृत सरोवर दा इशनान जिस दे बाबत सतगुरु जी की पावन बाणी दे वचन रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर इस नाना गुरपुरै कीने दाना। इसे तरह फिर सत संगत जी जिथे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब सारी मनुखता दे लई सांझा सब दे लई उपदेश देण वाला उथे विशेष करके सतगुरु कलगीधर साहिब जी महाराज धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी वलों साजे खालसा पंथ की योग अगवाई करन वाला पावन स्थान सारे तख्तां दे विचो श्रोमणी तख्त श्री अकाल तख्त साहिब जी की पावन स्थान इमारत ओ धरती ओ थां ओ हिस्सा जिथों दे दर्शन करन दे लई हरेक सिख दी सदा वास्ते लालसा इच्छा बनी रहिंदी है। सत संगत जी राजनीतिक लोकां दे आपो अपने राज ते उहनां दे तख्त ने आप सारी संगत इस बात नूं भली प्रकार जानदे हो कि दुनिया दे तख्त दुनियावी राजयां दे तख्त बादशाहां दे तख्त समय समय अनुसार बदल जांदे ने। इस धरती दे उत्ते अज तक कोई भी ऐसा नहीं जिस दा राज सदा वास्ते स्थापित बनिया रहे। कोई ऐसा नहीं है जिस दा राज पिछे बनिया रहा होवे ते कोई ऐसा नहीं होवेगा जिस दा सदा लई राज बनिया रहे। भावें बहुत सारे लोकां ने दावे कीते सन औरंगजेब ने दावे कीते सी समय समय अनुसार अबदाली वर्गियां ने दावे कीते कई हुण भी दावे कर लैंदे ने पर सत संगत जी उहनां दे दावे झूठे पै जांदे ने क्योंकि यह दुनियावी राज तख्त कदे भी स्थापित नहीं रहिंदे हन। यह जिहड़ा धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने पावन तख्त श्री अकाल तख्त साहिब जी का रचिया है जिस दी सिरजना दा दिवस सात संगत दी परसों नूं हाड़वदी पंचमी वाले दिन जो सतगुरु जी ने 1663 बिक्रमी संबत 1606 ईस्वी सन दे विच श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी की शहादत तो उपरंत रचिया और इस अकाल तख्त की रचना महाराज साहब जी ने अपने सिखां दी आजाद अडरी होद हस्ती नूं साबित रखण वास्ते कीती जिथे सत संगत दी सिखा नूं इस तख्त दी छत्र छाया दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन बाणी दा आसरा लैंदिआं और नाल महाराज जी ने यह सिख्या प्रदान कीती कि अपने तन दे उत्ते शस्त्र धारण करने। सतगुरु जी ने भी दो तलवारां धारण कीतियां सी ना मीरी और पीरी दीआं अकाल तख्त जिसका पहला नाम अकाल बुंगा रखिया, 14 फुट लंबा, 7 फुट उच्चा, 8 फुट चौड़ा वो स्थान जिसका नाम अकाल तख्त रखिया है। तख्त फारसी और उर्दू का शब्द, बैठन वाली थान सिंघासन। अकाल दे जो अर्थ पढ़ांगे सात संगत दी, काल नाम हुंदा समय दा, काल नाम मौत दा, ते काल नाम हनेरे दा भी है। ते जदो मुरे आड़ा लगा है इस दा भाव के उस समय मौत और हनेरे तो रहत। दुनियावी तख्त राजनीतिक लोकां दे तख्त समय दी हदबंदी दे विच हुंदे ने, बदल जांदे ने। जे समय दी हदबंदी विच ना होण ते दूसरा कोई भारी बल वाला अपनी ताकत दे नाल पहले राजे कोलों तख्त खो लैंदा है ते तख्त दा मालक बन जांदा है। पर ए तख्त सात संगत जी अकाल दा है, जिहड़ा समय तो रहत है, जिस दे उपर किसे दा भी बल नहीं, जिहदे उत्ते किसे दी भी ताकत नहीं चलदी, जिस उपर किसे दा भी जोर नहीं चलदा। फिर दूसरा भाव है काल नाम मौत, समय इसे तरह हनेरे दा। जदों सत संगत जी मौत हुंदी है जां मौत दिसदी है उस तो अगां कुछ भी नहीं है, हनेरा है। पर सतगुरु महाराज जी ने यह अकाल दा तख्त रच करके अपने सिखां नूं इस हनेरे दे विच्चों ही एक रोशनी और जिंदगी बख्शिश कीती है कि जदों दुनियावी पक्ष वलों दुनियावी लोकां दे राजनीतिक लोकां दे तख्तां दे वलों निराशता हनेरा हिरदे विच आ जावे, उस समय साडे सिख ने इस तख्त दी शरण दे विच आउणा ते इस तख्त तो अकाल दी रोशनी दा ज्ञान प्राप्त होवेगा, जिस रोशनी दे नाल इस जिंदगी और जीवन दे सफलता दे नाल नाल अपने आत्म स्वरूप नूं परमेश्वर विच भेद कर सकदा है। हनेरे विच चल के किते जाना होवे ते कदे मनुख किते पहुंच नहीं सकदा है, उस नूं हनेरे दे विच रोशनी दी लोड़ जरूर पवेगी, चानण चाहीदा है, फिर वो अपनी मंजिल ते अपने टिकाने ते अपने मिथे हुए निशाने ते पहुंच सकदा, अपने मकसद नूं पूरा कर सकदा है। सात संगत दी इसे तरह जिंदगी दा ये जीवन दा एक मकसद है, एक निशाना है कि असी अकाल परमेश्वर वाहिगुरु नूं प्राप्त करना है। ते वो किस तों रोशनी लै के प्राप्त हो सकदा फिर अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु जी के स्थान तो। ताई महाराज साहिब जी ने सब तो पहला वचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे मूल मंत्र स्वरूप दे विच अकाल मूरत कह के दर्शाया है। ते उसे दी मूरत हस्ती नूं जेड़ी सात संगत जी होर सारियां रत प्रीतियां तो रहत है, उसे दे स्वरूप नूं धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने रचिया। बड़े बल दे नाल कविराज भाई संतोख सिंह साहिब जी वचन करदे ने श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दे अंदर, कहिंदे बहुत बल दे नाल सतगुरु जी ने सब तों पहली इट आप अपने पवित्र हस्त कमलां दे नाल टिकाई, और फिर किसी मिस्त्री नूं नहीं लिआंदा, किसी मजदूर नूं नहीं लिआंदा। धन बाबा बुढ़ा साहिब जी महापुरख जेड़े सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी दी चरणा दी सेवा दे विच बचपन दी अवस्था विच ही हाजिर हो गए, गुरु घर दे महान गुरसिख ब्रह्म दी अवस्था नूं परनाए होए। सत संगत जी सतगुरु जी दी कृपा मेहरबानगी दे बख्शिश दे पात्र धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पहले मुख सेवादार स्थापित होए, तिना दी चोण कीती इस अकाल तख्त साहिब जी दी रचना करन वास्ते। दूसरे गुरसिख कौन सन? धन सतगुरु महाराज श्री गुरु अमरदास साहिब जी के रिश्ते विच भतीजा लगदे ने धन भाई गुरदास साहिब जी, जिन्हां नूं गुरु साहिब जी दीआं बेअंत बख्शिशां प्राप्त होईआं ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन लिखाई करन दा सुभाग प्राप्त होया है। गुरु की बाणी दी कुंजी कही जांदी है, उन्हां दी पावन रचना भाई गुरुदास जी कीआं शुभ वारां उन्हां दी

0: तीसरे पातशाह महाराज सेवा और निम्रता दे स्वरूप जिन्हां दे बाबत पावन गुरबाणी जी के पाठ साहिबान जी दे वचन हन गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जीह कछ कही न जाई। ऐसे धन गुरु अमरदास साहिब जी महाराज जिन्हां दे बाबत वचन पढ़दे हां भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै। हे सतगुरु महाराज आप जी की बेअंत वडियाई एक जीव नाल कथन नहीं कीती जा सकती। आप जी दी वडियाई शोभा आप जी नूं ही बनाउंदी है की कथन करिए। ऐसे धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज जिन्हां ने बजुर्ग अवस्था दे विच सत संगत दी गुरु घर दी सेवा आरंभ कीती और सेवा भी ऐसी रिश्ते विच कुड़माचारी दा संबंध भी नहीं विचारिया। ऐसे निम्र सुभाव नूं धारण करदिआं 12 सालां तक महाराज जी दे चरणां दी सेवा निभाई। दीन दयाल धन श्री गुरु अमरदास साहिब सोरठ रागणी दे अंदर पावन बचन वाहिगुरु परमेश्वर दे प्रेम दा समझा रहे जना रहे हन।
1: हर जीओ तुदनो सदा सालाही प्यारे।
0: ये प्यारे परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ तुदनो सदा सालाही साडे पर ऐसी कृपा मेहरबानगी करो कि असी आप जी नूं सदा ही सलाउंदे रहिए। सलाउण दा भाव हुंदा साध संगत दी एक सिफत हुंदी है एक सलाह करनी। सिफत सलाह सिफत हुंदी है साध संगत दी जिहड़ी आप मुखों करनी होवे। किसी नूं वड्या देना इहनूं सिफत कहिंदे ने ते सलाउणा हुंदा है जदों मिल करके सलाहीए वड्याईए। जदों किसी दी जस नूं उस्तत नूं करना होवे मिलके बहुते करन जिवें आपां सारे गुरु की हजूरी विच सजे हां गुरु साहब जी का जस कर रहे हां सारिआं दे मनां विच गुरु साहब जी का प्रेम और जस है यह है सिफत ते जिहड़ा आपां सारे मिलके कर रहे हां यह है सलाह। कहिंदे हन सतगुरु जी की सिफतो सलाह विच जुड़ना जिथे मन करके जुड़ना उथे तन करके भी। अरे बेनती दा भाव साहिब वचन करदे हर जियो हे हरि वाहिगुरु परमेश्वर जियो कृपा करो तुदनो सदा सलाही प्यारे। हे प्यारे परमेश्वर जी असी आप जी नूं सदा ही सलाउंदे रहिए।
1: विचर घट अंतर है सासा
0: किन्ने क समें लिए राधिए। महाराज कहिंदे बेनती करिए महाराज जिचर जिन्ना चिर घट शरीर रूपी इस घड़े दे अंतर अंदर है सासा जिन्ना चिर अंदर श्वास चलदे हन जिन्ना चिर अंदर साह चलदे हन महाराज असी ओना समा आप जी नूं आराध दे रहिए। ये नहीं कि जदों लोड़ पई ते उस वेले आराध लिया। साध संगत जी भगत कबीर साहिब जी ने की निर्णय करवाया पावन गुरबाणी विच कहिंदे कबीर काम परे हर सिमरी है ऐसा सिमरहो नित अमरापुर वासा करहो हर गया बहोरै चित। जिस नूं काम पैण ते सिमरदे हो जे साध संगत जी निष्काम होके कामना तो रहत होके सिमरोंगे ते फिर महाराज कहिंदे उह ते सिद्धा तुहानूं प्राप्ति हो जाएगा। काम पैण ते सिमरदिआं भी साडा कार्ज सफला हो जे पर तुसी रोज वचन पढ़दे हो सुखमणी साहब दी बाणी महाराज कहिंदे सेवा करत होए निहकामी तिस कौ होत प्राप्त स्वामी। जे इवें आराधांगे ते परमेश्वर ही मिल जावेगा। इस वास्ते जिन्ना चिर श्वास ने साहां दे चलन तक वाहिगुरु परमेश्वर नूं आराधिए।
1: एक पल खन विसर है तू स्वामी।
0: हे स्वामी मालक परमेश्वर जे तू सानू एक पल खिन मात्र समय ले वी विसर जावे। पल की हुंदा है साध संगत दी 15 बार वाहिगुरु एक बार साध संगत दी पलक चपकीए ते उहनूं निमख कहा जांदा है। 15 निमखां दा एक विसवा बनदा है ते 15 विसवियां दा साध संगत जी एक चसा ते 30 चसियां दा एक पल बनदा है। सौखे शब्दां विच समझना होवे ते पल उस नूं कहिंदे ने 24 मिंटां दा जिहड़ा 60वां हिस्सा है। मैंने एक घड़ी दा 60वां हिस्सा 24 साढ़े 24 मिनट की एक घड़ी मनी जाती है ते ओदे विचों सठवां हिस्सा गिण लिए उसनूं पल कहिंदे हन। हुण तुसीं विचार करो भी वह पल किन्ना थोड़ा समा है ते खिन नाम साध संगत जी ग्रंथां विच वजन लिखिया खिन नाम हुंदा कग्गा ते टैंका घट शब्द कहण दे विच जिन्ना समा लग जाए उसनूं खिन कहा जांदा है ते दूसरे रूप दे विच सूई नूं पिपल दे पत्ते दे विचों लंघाउण विच जिन्ना समा लगे कहिंदे उहनूं वी खिन दा अगला पल कहा जांदा समा कहा जांदा। किन्ना कु समा लगदा है जी पिपल दे पत्ते दे विचों सूई लंघाउण दे लई जां घट शब्द कहण दे लई? धन गुरु अमरदास साहिब जी वचन करदे कहिंदे एक खिन एक पल खिन विसरहि तू स्वामी। हे स्वामी मालक परमेश्वर जे तू सानू एक पल एक घड़ी दे सठवें हिस्से जिन्ने समय लई विसर जावे एक छिन मात्र लई विसर जावे ते
1: जानो बरस पचासा
0: असी ओनू खिन ते पल नहीं जावा जाणांगे असी ओनू इवें जाणांगे कि साडी जिंदगी दा अद्धा समा 100 वरे दी उम्र महाराज जी ने गुरबाणी च दर्शाई कहिंदे साडी जिंदगी अद्धी बीत गई 50 साल साडे लंघ गए। इह सत संगत दे असी तां हर रोज ही परमेश्वर नूं याद नहीं करदे फिर सिमरदे नहीं। जे सिमरदे हां आपां कहांगे जी असी ते बाणी पढ़दे हां बाणी पढ़दे हां केवल सत संगत जी स्वार्थ दे लई कारज दी पूर्ति लई। परमेश्वर दा आराधन की हुंदा अगले बचना विच महाराज समझाउणगे। तो साहिब वचन करदे जाणो बरस पचासा जिवें किसे तरह 50 साल बीत गए महाराज जे सानू तू एक पल एक छिन लई विसर जावे ते असी अपनी जिंदगी दे 50 साल बीते जाणांगे।
1: हम मूड मुगद सदा से भाई
0: असी मूड मुगद मूड नाम हुंदा मूर्ख दा जिहड़ा साध संगत जी जिहनूं संसार दे व्यवहारक कार्ज करन दी कोई समझ ज्ञात ना होवे ते मुगद नाम ओनू क्या ओहदा क्या जांदा जिस नूं परमेश्वर दी प्राप्ति दे परमार्थ दे कारजां दी कोई ज्ञान ना ज्ञात ना होवे। इसलिए महाराज असी मूड हां ना सानू संसार दे व्यवहार कार्ज करन दी कोई सोझ समझ है ते ना सानू परमार्थ परमेश्वर दी प्राप्ति करन दी कोई सोझ समझ ज्ञात है। इस प्रकार हम मूड मुगद सदा से भाई भाई नाम भरावां दा कहिए क्यों क्योंकि सारिआं दे विच साध संगत दी उह परमेश्वर दी जोत है। इह सारिआं विच इक परमेश्वर दी जोत होण करके सारे परमेश्वर दी अंश होण करके भाई भरा होए। तो भाई हम असी तां मूड भाई परमेश्वर पाउण वाले वाहिगुरु
1: गुरु कै शब्द प्रगासा
0: गुरु साहिब जी के पावन शब्द दे द्वारा ही प्रगासा ज्ञान चानण नूं प्राप्त हो सकदे हां। गुरु का शब्द शब्द नाम हुंदा गुरु साहिब जी का उपदेश गुरु की सिख्या गुरु का बचन ओ गुरु के बचन द्वारा ही हृदय नूं ज्ञात हुंदी।
1: हर जीओ तुम आपे देहो बुझाई
0: हरि वाहिगुरु परमेश्वर जी तुसी कृपा करके आप ही अपने स्वरूप नूं बुझा देवो जुना देवो सानू। महाराज जिहड़ी गल साडे हृदय दे विच ज्ञात नहीं है ना वो आप ही कृपा करके सानू बुझा देवो जुना देवो क्योंकि ए मुंदावनी है एक सतगुरु जी ने पाई हुई बुझारत है साध संगत जी इस नूं गुरु कृपा तो बिना कदे कोई सुलझा नहीं सकदा। गुरु की संगत गुरु के संग विच आए तो बिना कदे सुलझदी नहीं है। इसलिए महाराज जी नूं बेनती करदे ने बेनती दा ढंग दर्शाउंदे ने किवें कहो हर जीओ हे हरि वाहिगुरु परमेश्वर जी तुसी आप बुझा देवो जना देवो।
1: हर जीओ तुद विटहु वारिआ सद ही
0: हे हरि वाहिगुरु परमेश्वर जी सदा ही सद ही नाम है हमेशा दा सद नाम है सैकड़े वार दा सदा सदा दा महाराज आप जी दे उत्तो असी वलिहार जांदे
1: तेरे नाम विटहो बल जाए
0: नाम तो भी महाराज असी बलिहार बलिहार जाना कर

0: महाराज आप जी का जो शब्द है ना उस द्वारा ही असि मुए मरे हाँ जीवत भाव दे वलों ते शब्द मार जी वाले जेड़ा शब्द है ना उही महाराज साहब जी साडे आपेपन नूं जेड़ी हंगता है हंकार मोह दा रूप है उस नूं मार करके जीवाले ज्यौंदे करदा जीवत भाव च लै आउंदा है। हम शब्द मुए श्री गुरु अमरदास साहिब जी का ही वचन है महाराज कृपा करके समझाउंदे ने शब्द मरहो फिर जीवो सद ही ता फिर मरण न होई। जदो गुरु साहिब जी के शब्द द्वारा आपे नूं मार लवांगे इस दा भाव है सत संगत दी जीवत भाव तो आपे नूं अपने हंकार नूं अपने माण नूं मैं मेरी मोह नूं मेट लैणा आपे नूं मार लैणा आपे दा त्याग कर देना अपनत धारण करके रखदे हन कि मेरा शरीर है ये मेरे संबंधी ने यह मेरी जमीन जायदाद है यह मेरी धन संपत्ति है मैं इहदा मालक हाँ यह सारा कुछ मेरा है यह मेरा कीता मेरा बनाया होया कुछ भी अपना नहीं। महाराज कहिंदे जदों यह भाव त्याग देवोंगे तो यह त्यागया किवें जाना है शब्द मरहो शब्द दे नाल हम शब्द मुए महाराज आप जी दे शब्द की कमाई करके आप जी दे उपदेश नूं कमा के आप जी दी सिख्या नूं धारण करके असीं आपे वलों मरे हाँ ते शब्द मार जी वाले भाई हे भई जिहड़ा ये शब्द है ना ये आपे वलों मार करके संसार वलों मार करके जी नूं हरि वाहिगुरु परमेश्वर दे वल जिउंदा कर दिंदा है। हुण संसार दे उत्ते साध संगत दी किसे दी सौ वरे हजारां वरे भी पुराने समयां विच उमरा रही जे वह इनी उम्र बतीत की पर इनी उम्र दे विच वाहिगुरु परमेश्वर की भगती नहीं तो फिर दसो ऐसी उम्र का लाभ है कोई। सतगुरु जी ने ऐसी उम्र वड्याया किते नहीं वड्याया है। धन गुरु नानक देव साहिब जी का वचन आप रोज पढ़ते महाराज कहिंदे जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवां खंडा विच जाणीए नाल चले सब कोए चंगा नाओ रखाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर न आवई तां वात न पुछै की करना फिर ऐसी उम्र नूं गुरु के उपदेश द्वारा सत संगत जी आपे नूं मार के गुरु के प्रेम विच जदों जिउंदे हो गए जीवन ओ सफला है ओ जीवन दी सफलता है।
1: शब्द ही मुक्त पाई
0: वचन करदे ने शब्द ही मुक्त पाई गुरु के शब्द उपदेश द्वारा ही मुक्ति नूं प्राप्त होई दा है।
1: शब्द मन तन निर्मल होआ
0: गुरु साहब जी का शब्द उपदेश ही है सात संगत जी देश दे नाल मन हिरदा ते तन शरीर निर्मल हुंदा है। मन दे विच मैल लगी है किवें लैंदी है रोज बचन पढ़दे हो भरिए मत पापा कै संग ओह तोपै नावै कै रंग नाम की है गुरु साहब जी का शब्द गुरु का बचन गुरु की बाणी। साहिब कहिंदे ने बचन कर रहे ने महाराज के शब्दे मन तन निर्मल होवे हुण तन दी मैल किवें लैंदी है तनू ते बारले पानी साबण अतर फलेल ला के भी एदी मैल ला ली दी सुगंधी आ जांदी तन ते पर ए मैल नहीं है। जरा इस वचन नूं ध्यान दे नाल समझना तन दी मैल की है सात संगत दी अखां दे नाल पराया रूप तकना तन दी मैल है रसना दे नाल छे रसां दे विच फसे रहना पदार्थां दे रस लैने जीभा दे नाल दूसरे दी निंदा करनी कन्ना दे नाल निंदा सुननी हत्थां दे नाल पराया हक खोना पैरां दे नाल भैड़ियां दी संगत विच चल के जाना ए तन दी मैल है साध संगत दी। ए तन दी मैल कदों लैंदी है ते किवें लैंदी है गुरु साहब जी के शब्द उपदेश दी कमाई दे नाल जदों गुरु साहब जी दे चरणां दी शरण विच आईदा है उदों गुरु का वचन जदों हिरदे च वस जाए। महाराज जी दे प्यारियां ने समझाया सी ना कि जा के पुछता भी तेरा संग कौन कौन निभावेगा जिन्हां दे लई तू भैड़े कर्म करदा ए गया सी जाके पुछया घरवाली ने भी मना करता तेरे लड़ लगी हां तू ही मेरी पालना करनी संभाल करनी माता पिता ने क्या वड्डियां कर दिता पाल के हुण साडी सेवा तू संभाल कर पुत्र ने कहा तेरा बच्चा हां तू पाल पाप कर्म करेगा ते लेखा तू देवेगा मैं तेरा संगी क्यों बना। ते फिर साध संगत दी ए तन दी मैल जदों समझ पै गई कि मैं भैड़ा कर्म कर रहा हां उस समय फिर उपदेश की जाचना की उन्होंने वचन दिता सी सतपुरखा ने मरा मरा क्या कर बिरती जुड़ गई मरे मरे तो राम रमे हुए मालक परमेश्वर का नाम हिरदे च ज्ञात हो गई फिर सात संगत दी जीवन की सफलता हो गई। की है ए सिख्या है वचन है शब्द है उपदेश है गुरु की बाणी का जिस द्वारा अपने मन ते तन नू निर्मल कर लईदा निर्मल मैल तो रहत कर लईदा है। शब्दे मन तन निर्मल हुआ हर वसिया मन आई ते हरि वाहिगुरु परमेश्वर जेड़ा है ना ओ फिर मन हिरदे विच आके वस जांदा है। आपां किते जाके रहना होवे गंदे थां ते बहिंदा जी कोई कोई नहीं बहिंदा साफ करदे सफाई करदे हां चंगा थां वेखदे हां ते जिस परमेश्वर ने हिरदे विच आ करके हिरदे रूपी तखत ते आण के विराजमान होना है इहदे विच विकारां ते विशियां दी मैल वाले थां ते परमेश्वर आवेगा कदे कदे नहीं आवेगा। किथे आवेगा जिथे सात संगत जी गुरु का शब्द वसदा है जिथे गुरु का वचन वसदा है उथे परमेश्वर आण के विराजदा हर वसिया मन आई फिर हरि वाहिगुरु परमेश्वर मन विच आण के वसदा।
1: शब्द गुर दाता जित मन राता
0: शब्द इस शब्द का दाता कौन है गुरु है गुरु तो बिना होर कोई शब्द देने वाला नहीं। अजकल दुनिया ते बड़े झूठे गुरु ने कन्ना मन्ना कुर तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुर कहणगे मैं तेरा गुरु तू मेरा चेला दसी ना किसे नू तेनू नाम दिता अज ए किहो जिहा नाम है जिहड़ा किसे नू दसना नहीं। सतगुरु अमरदास साहब तां पुकार के कहिंदे ने आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गाव हो सच्ची बाणी महाराज ते पुकार के कहिंदे हन। शब्द साध संगत जी गुरदाता गुरु साहब जी का दिता होया ए शब्द है जिस दे विच जित मन राता जिहदा मन रतिया रंगिया गया
1: हर सों रहिया समाई
0: ओ हरि वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल समा जांदा मिल जांदा भेद हो जांदा।
1: शब्द न जाने है से अन्ने बोले
0: धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज कहिंदे जेडे शब्द नहीं ना जानदे गुरु साहब जी का वचन नहीं जानदे ओ अन्ने ते बोले ने। महाराज साडिया ते अखां भी ने ऐनक भी नहीं लगी असी ते चंगी तरह पढ़ देख लैंदे हां साडे ते कन्न भी बड़े चंगे ने महाराज असी सुन भी सारा कुछ लैने सानू बोले किवें कहने हो। महाराज कहिंदे जेडे शब्द नहीं ना जानदे गुरु का वचन उपदेश सिख्या नहीं जानदे ओ अन्ने हन। क्यों अन्ने ने क्योंकि उन्हां दे कोल ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਨੇਤਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਇਵੇਂ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ। ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मन ते बुद्धि रूप अखां नू खोलिया ही नहीं है कदे मन वाहिगुरु परमेश्वर दे शब्द उपदेश वल लाया ही नहीं है बुद्धि नाल कदे निर्णय नहीं कीता कि परमेश्वर दा नाम सत है ते असी इहदे नाल जुड़ना है। इस वास्ते कहिंदे ज्ञान ते विचार ए नजर नहीं है मन बुद्ध रूपी नेत्रां अखां दे विच इसलिए अन्ने हो। सतगुरु जी के प्यारे भगत साहिबान जी दी बाणी विच महाराज की समझाउंदे ने वचन करके कहिंदे अन्ने ओ नहीं हन जिन्हां दे मुख ते अखां नहीं हन अन्ने ओ ने जे खसमो कुथे जाहे अंधे सेई नानका जे खसमो कुथे जाहे ओ ने अन्ने जिहड़े मालक वलों साध संगत दी परमेश्वर वलों भुले होए ने। इस वास्ते शब्द ना जाणहे से अन्ने ते फिर अगला वचन क्या है बोले बोले किवें ने महाराज दो कन्न दोवां कन्नां विच ना श्रद्धा ते ना विश्वास गुरु का वचन सुन के हिरदे च श्रद्धा नहीं पैदा हुई ते दूसरा कन्न विश्वास भरोसे दा उस नाल यकीन नहीं बनिया सुन के ना हिरदे च श्रद्धा ते ना विश्वास श्रद्धा ते विश्वास दे कन्न नहीं इस वास्ते बोले हां इस वास्ते बोले हो रहे हन। ते जेड़े ऐसे ने शब्द नहीं जाणिया जेड़े अन्ने ने ज्ञान विचार दी नजर तो हीणे होण करके ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਹਨ
1: ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜੱਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਦ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿੰਨ ਮਾਦ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਕਿੱਡਾ ਸਖਤੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਏ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ।
1: ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ।
0: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 6 ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਵਿਰਥਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
1: ਜੰਮਹਿ ਵਾੜੋ ਵਾੜਾ।
0: ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਜਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਨਾ ਵਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਵਾਸਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਹ ਦੀਏ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਾਸਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਵਾਸਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸਨਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਸਨਾ ਇਹ ਰਸ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਸ ਪੀਆ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਸ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਓ ਜਨਮ ਵਿਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਮਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ, ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
1: ਬਿਸਟਾਂ ਕੇ ਕੀੜ ਬਿਸਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣ।
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਸਟਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਨ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਰੂਪ ਗੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਗਏ।
1: ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਦ ਗੁਬਾਰਾ।
0: ਐਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਗਦ ਮੂਰਖ ਗੁਬਾਰਲ ਪੱਗ ਸਬੇ ਸਮਝ।
1: ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਭਾਈ।
0: ਭਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ।
1: ਜਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ।
0: ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।
1: ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕੋਏ ਨਾ ਮਿਟੈ ਭਾਈ।
0: ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ।
1: ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ।
0: ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1: नानक नाम वसया मन अंतर भाई
0: जिन्हां दे हिरदे दे अंदर नाम वस गया है
1: कवर न दूजा कोई
0: इन्हां वास्ते दूसरा होर कोई नहीं है एक नाम ही है महाराज परमेश्वर जी दा केड़ा नाम है आओ कुछ पल वास्ते मिलके सारे सिमरिए फिर लड़ीवार पावन बाणी दे शब्द दी विचार विच जुड़ांगे मनोबिरती एकाग्र करिए सतगुरु जी ने शब्द बख्श

0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानु वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0403-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
2: हाँ जी।

होगा, मुझे छोड़ गया तो क्या हुआ, आदत से मजबूर होगा, अल्लाह कसम यकीन है मर जाओगे, जो हमारे साथ किया आपके साथ भी जरूर होगा, आपके साथ भी जरूर होगा।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।
4: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
5: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपने बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300-1516-16 quicksignage.com.au।
4: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जा वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसेयोग नाम, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
6: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
7: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेस विच समझाऊंगा किवें?
6: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 Grace Way, Revan Hall।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
1: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।

रेडियो हांजी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत जी इनसाइट रिपोर्ट प्रोग्राम दे विच तुहाडा जी आयां नूं आखदे हां स्वागत करदे हां और इनसाइट रिपोर्ट दे विच अज दे दिन गल USSR दी करनी है लंघे वेले दी गल हैगी है असल च ये मौका इस करके बनया क्योंकि यूक्रेन दा आज़ादी दिहाड़ा हाले लंघ के ही गया 24 अगस्त नूं हुंदा यूक्रेन की आज़ादी दिहाड़े के मौके के उत्ते बरतानिया के लातविया के ते होर दूसरे देशों के दे, राष्ट्रपति या राष्ट्र प्रमुख उत्ते पहुँचते हैं वैसे जदों दूसरे देशों के दे, राष्ट्र प्रमुख पहुँचते हैं तो यह रूस के लिए जिहड़ी अजकल जंग एक चल रही है उहदे लिए एक खतरा दस्या जा रहा है क्योंकि एक यह भी गल तुर पई है कि नेटो ना सही तो फिर एक ऐसी ताकत ही बना ली जाए जिस यूक्रेन उन्हों का साथी हो जिहदे च USSR दे साबका साथी जिहड़े ने उहदा साथ देण यानी लातविया या जिहड़े होर दूसरे मुल्क हैगे ने एस्टोनिया वगैरह पर बरतानिया दे प्रधानमंत्री भी इत्थे पहुँचते हैं सो एक बड़ा सुनेहा भी चला जांदा खैर ये गल जो हुई है खबर जो मैं पढ़ी ये तो फिर मैं सोचा कि इनसाइट रिपोर्ट दे विच हुण ये गल्लां तां नहीं करनियां चलो खैर ये तो हो ही रही हैगियां ने क्योंकि डे टू डे पॉलिटिक्स हुंदी है ये बदलती बिगड़ती रहिंदी हैगी है बड़ी छेती हालात बदल जाते हैं बिगड़ जाते हैं जिवें हुण असीं सीरिया च देखिया खबरां च तुसीं सुणिया ही होणा कि सीरिया जिन्हों लगभग 4 दहाके अमेरिका अतवादी दसदा रहा हुण एक मित्र देश दसन लग पे क्यों क्योंकि सीरिया दे विच हुण उन्हां दा बनाया होया एक राष्ट्रपति हैगा रूस वाला नहीं हैगा पर यह जिहड़ी गल अज इत्थों हुण मैं करन लग्या इत्थों सोचिया कि इनसाइट रिपोर्ट प्रोग्राम की शुरुआत करिए यह सी कि यह बैलेंस जिहड़ा है यह दुनिया च एक बैलेंस अमरीका ने जिहड़ा हुण बिगाड़ के रखिया अमरीका इकलौती ताकत हुण रह गया चीन दूसरी उभरती ताकत बन रहा पर ओडी बराबर की ताकत हले भी नहीं बन पा रहा है अमरीका नू खुल के अखा नहीं दिखा सकता है चीन वो अलग गल है कि अमेरिका भी चीन नहीं खुल के अखा दिखा सकता अमेरिका नू भी पता है कि चीन जे उन्हां दे बराबर दा नहीं तो उन्हां तो कितने घट भी नहीं है कि आए बिच भिड़ के अमरीका भी अपना नुकसान ही करवाऊगा पर वह गल नहीं जो अमेरिका ने इतिहास से देखी है जिमें सोवियत संघ हुंदा सी सोवियत यूनियन या USSR या यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जो मर्जी तुसी कह लो साबका रूस उस वेले एक सत्ता का बैलेंस हुंदा सी जदों USSR सी और उस वेले सत्ता का यह बैलेंस जिहड़ा दुनिया दे विच बहुत जरूरी सी क्योंकि एक पासे कैपिटलिस्ट सोसाइटी सी ते दूसरे पासे एक लैफ्टिस्ट सोसाइटी सी हालांकि इत्थे भी बैलेंस बहुत जरूरी है बैलेंस इस करके जरूरी है कि जदों तुसी उस बैलेंस नू नहीं बना पाते किसी एक कंट्री दे विच भी तो उत्थे भी जिहड़ा किसी ना किसी तरीके दे नाल तरक्की नहीं हो सकती उदाहरण के तौर दे उत्ते रशिया जिथे बड़े लंबे चिर तक लैफ्टिस्ट पार्टियां ने राज किया जार दे जान तो बाद जार जिहड़ा आखिरी राजा सीगा रूस का उस तो बाद और नॉर्थ कोरिया चाइना कंप्लीटली लैफ्टिस्ट सोसाइटीज़ हैगियां ने क्यूबा टू सम एक्सटेंट ये इन्निया ज़्यादा लैफ्टिस्ट हैगियां ने कि उत्थे एक बैलेंस ही नहीं हो पा रहा क्योंकि इन्हां कंट्रीज़ दे विच मैं इदां नहीं कह रहा हैगा कि लैफ्टिस्ट सोच माड़ी हैगी है या राइट विंगर सोच चंगी हैगी है पर यह चक्कर यह है कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है हुण अमेरिका दे विच अज दी तरीक दे विच बहुत ज़्यादा राइट विंग आइडियोलॉजी जदों तो ट्रंप हैगे ने उह भारी है हालांकि अमेरिका दे विच सत्ता दा बैलेंस करन वाली दूसरी पार्टी लैफ्टिस्ट तो नहीं कही जा सकती पर हाँ सेंट्रलिस्ट पार्टी एक मनी जा सकती हैगी पर डोनाल्ड ट्रंप दी रिपब्लिकन पार्टी ही हमेशा सत्ता च रही तो अमेरिका दा ही नहीं दुनिया दा भी नुकसान होगा ठीक इस तरीके दे नाल जिवें रूस का नुकसान लैफ्टिस्ट पार्टी कर रही है चाइना का नुकसान कम्युनिस्ट पार्टी हालांकि चाइना के लिए अपने लिए गुड हैगा वो बट वो लोंग टर्म के किन्ना चंगा होगा किन्ना माड़ा होगा इहदा फैसला तो भविख कर सकता है पर यह सत्ता का बैलेंस जिहड़ा बहुत जरूरी है खब्बे पक्षी ते सज्जे पक्षी ताकत जिहड़ियां ने या मिड सेंट्रलिस्ट ताकत जिहड़ियां ने वो होनियां चाहीदियां ने इंडिया दे विच भाजपा जिन्हों एक राइट विंगर सरकार मान लिया जाता है तो कांग्रेस जिन्हों एक सेंट्रलिस्ट सरकार मान लिया जाता है अब या पार्टियां मान लिया जाता है हुण जे
ਕੰਟੀਨਿਊ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੈਫਟਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ, ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ USSR ਯਾਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਸ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, USSR ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਜਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਨਸਾਈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਤਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ੋ। ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਸ ਖਲਨਾਇਕ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, USSR ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟ ਰਿਪੋਰਟ।

0: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending। व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तुन्ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग।
1: बैटरी लगवाना हो गया, होर भी आसान, बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
2: फिर लवाइए कित्थों?
1: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
2: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 थे।
3: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
4: हाँ जी रेडियो।
5: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला, बीन बजाती हुई

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: ऑस्ट्रेलिया च अपना कर लेना या कंस्ट्रक्शन करवानी है मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है तो टेंशन क्यों टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील लो क्रेडिट स्कोर वेलकम कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग व्याह खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास तुन्ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन हर स्टाइल ते हर ओकेजन लिए जेन्युइन ज्वेलरी जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग तुन्ना ज्वेलर्स परोसे दी निशानी
3: सोना चाहिदा
4: भरोसा चाहिदा
3: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042